गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़ नर किसर, जुग जुग वेदा नाले

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवासु, जिन हरजन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु, धन धन सत संगत जित हर रस पा।

शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद

ओ पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुर जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी।

लिया, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करू प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबहु, आप हाथ दे मुहे बचावहु, सुखी बसे मोरू परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा, भोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को वासंगरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई

कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आदु अनिल अनादु असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूढ़

दीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे

घरों वरसाए हुए साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी के प्यारियां विचों भाई साहब भाई दया सिंह जी तिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। सो उन्हां दे पावन जन्म दिहाड़े नूं याद करदिआं गरीब नवाज आप जी के चरणा विच अरदास बेनती जोदड़ी आप जी ने कृपा करनी समूह गुरसिखां दे जीवन तों सोझी बख्शिश करन दी रहमत करनी उदम बख्शिश करना रहमता करनिया सतगुर जीओ दरों घरों नवाजना रहमता करनिया गरीब नवाज इस वक्त दीवाना की संपूर्णता मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते संगत विच वरत्या प्रसाद जो जी शके सो आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे कृपा करो पावन हुक्म बख्शो जी उपरंत अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सुख होवै नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया।

अनुमानिक कर ज्ञान गुर कहो विचार कठ हो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसया से पासु परेत सुर नर पहे सतगुर चरण जिन परसया से पासु परेत सुर नर पहे सतनाम वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलुआ आए जे सतगुर अगे घालिया सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलुआ आए जे सतगुर अगे घालिया पोह न सकै जम काल सच्चा रख वालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख विण नावे कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदर हो कालिया

विश्वे चसया कड़िया पहरा चित्ती वारी माहो हुआ सूरज को रुचन एक नानक करते के केते वेश राग धनासरी मोहल्ला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मलिया लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवकणना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसद चानण सब मैं चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिन मोहे आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी

नमः। सतगुर ए नमः। श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों। कल कलेश तन माहे मिटावों। सिमरों जास विषम परे कै। नाम जपता गंत अनिकै। वेद प्राण सिमर सुदाख्यर। किन्ने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै। ताकि महिमा गनी नयावै। ताकि एक दर्श तुहारो। नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनि सुखमृत प्रभु नाम। भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै। प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै। प्रभु कै सिमरन दुश्मन डरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै। प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग। सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद। प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा। प्रभु कै सिमरन विनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन हुए सुफला। प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिने आप सिमराए। नानक ताकै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा। प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै। प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा। प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना। नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते। प्रभु को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन परवान। प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरै से बेमहताजे। प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरै से सुखवासी। प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला। नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी। प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे। प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता। प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे। प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग। नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे। प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी। प्रभु कै सिमरन सहसमानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन। प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहत चुनकार। सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभु भया। नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा। हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना। कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयु। नानक के प्रभु साथ। अष्टपदि जे मात पिता सुतमीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै। तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुवै अत भारी। हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुना चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया।
हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तर है अनिक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जे मार्ग जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत है पार पराही अनिक बिघन जय आय संघार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जो निजन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न धोवे हर का नाम कूट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध कै संग जे मार के गणे जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे मंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महाप्यान तपत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जात्र का मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नु दान मंथन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन को आप दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जनवर न जानी उत पूजन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बह करे नानक जन संकेते तेरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत हृदय संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईए नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमृत विख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होम में बहु रत्ना शरीर कटाए होम में कराती वर्तनेम करे बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सरथी वे अग्न माये हुमत पुराण कनिक सुव है वर भूम दान नेवली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संयम साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होम में मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै गर्व गुमान मन ते उठै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देह को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखे अटरै जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध का होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत सियान जम का भव व्यापै नक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भीख अनेक अग्नि बुझै कूट पाव दरगह नहीं सिजै झूठ सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतु सगली जमदान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मा गए साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सुदगावे
जी को अपनी शोभा लूरै सा संगे हो मैं चोरै जी को जन्म मरण ते डरै सा जिना की सरनी परै जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा समझा का मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जा का मन हुई सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पिक सगल सुर साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन्य हिलिपा निर्तन को तन तेरु नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरु मान सगल कटा को देव उदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संगा प्रभराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम है उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बकानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा सुमाल जिनकी अतिश्चित रख नानक निभि नाल उष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु सासुआ सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाऊ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सी जय जे प्रसाद धार उपर सुख बसै सुत प्रहात मीत बनता संघ हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जी प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संगरचना ऐसे दोग मुड़ंद व्यापे नानक काड लिहो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिद पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा यो भूलनहार नानक रखनहार अपार रतन त्या कौटी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छिड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पत बिकरार नानक काट लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक उचारा करे दिन रात बाहर पे गंतर मल माया छप सुनाए कच करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगुन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह ताहा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुने अंदा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो ओढ़ निभावे कह बुझारत बुझे डोरा निष्कही है तू समझे पूरा कह बिशन पद गावे गुंग जतन कर तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुम्हारी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई था स्यो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अणद के नमाया रंग रसै दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई कर्म याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हो स्वाग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी शलोक देन हार प्रभ छोट कै लागै आन सुवाए नानक कहु न सीजै बिन्ना वह पत जाय अष्टपदी
दस वस्तु ले पाछ पावे एक वस्तु कारण बिखूट गवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सूखता हु मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व तोग नानक तिन पाया अगंथ साहू अपनी देरास खात पीत बरतैन दुलास अपनी अमान कछ बौर साहू ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्ते से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मान मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक पांत माया के हित सर पर होत जान अनित बिर की छाया सो रंग लावे ओ विनसै ओ मन पछतावे जो दिसै सो चल नहार लपट रे उतै अंध अंधार ओ बटाउ सो जो लावे नेहि ताको हाथ न आवे के ही मन हर के नाम की फिर सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अशु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह विमान मिथ्या पशु प्रगत गुमान अस्त्र पग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तानी पर उपकारा मिथ्या बात लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की यार जा साच बिना कहूवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन ची घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मन नि प्रीत मुखो गंड लावत जन नहार प्रभु परवीन बाहर पेक न काऊ पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सी तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नानक जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप माने आप है आप करत नबीरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत।

प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जी प्रसाद ग्रह संग सुख जी प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाठ पैर सिमरो तिस रसना जी प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जी प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसे त्या कतवर लुभावह जी प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैर काका चस गावी जय जी प्रसाद तुझको नम जी प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जी प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गय मान पावह नानक पत सेती घर जावै जी प्रसाद अरु कंचन देई लिव लावो तिस राम स्नेही जी प्रसाद तिरौ ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जी प्रसाद तिर सगल छिदर ढाकी मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह जी प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जी प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जी प्रसाद भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जी प्रसाद सुहस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी ये प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रो प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसहत्याई जो एकल कै यहाँ उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बोदान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सा सचितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद फिख विस्माग जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभ त्यागवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तो प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जे प्रसाद तिर कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तू ता शिवरा जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मतूतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लाओ तित लगै हर नाथ नानकिन कह कछु न हाथ श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुखुजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमाहि सुमानी साध के संग अगुचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नक तुम तावै साध संग स्थित मन भावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साध के संग नहीं कह हो साध के संग नहीं होता आप साध के संग तुझे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हूं ताव है साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्तक उच्चर लह साधु के संग अजार सह साध के संग बसै सब था साध के संग बसै थानी उच्चै साधु के संग मैर पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निष्ठार है
साधु

कैसन सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे सत्संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुभा सुर दीवा साधक संग पाप लायन सत्संग अमृत गुण गायन साधक संग सुरभ थान गामु नानक साधक संग सफल जनामु साधक संग नहीं कछ कालु दर्शन पेट तोत निहालु साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला सत्संग बिछुड़त हर मेला जो इच्छे सो ही फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधृत बसै नानक उदर सा सुन रसै साधक संग सुनु हर नाऊ सत्संग हर के गुण गाऊ साधक संग न मन ते विसरै सत्संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रभु मीठा साधु कै संकट कर डीठा सत्संग भय आज्ञाकारी सत्संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जीता सुने तीता बख्याने साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूछते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेकै किस बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसदा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाऊ नानक ज्यों पावक का सह सुभाऊ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ने तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप है सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाई ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सुधा देश ब्रह्म ज्ञानी का कतिया न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व में पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कारे निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक वो पर सगुन निस्तार अष्टपदी
मिथ्या नाही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रैरूप न पिक नेत्र साध की टैल संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बास नमन ते टरेंद्री जित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णु सोजी सुपर सो प्रसन्नो विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछ केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वै नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मलक हुए तिस भगवती की मत उत्तम हुए भगवंत की टहल करे नित नीत मन तने अर्पे विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के अवधि जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमृत बुझ जय मूल सुख मैं जाने स्थूल छो वर्णा को देव उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान छो वर्णा मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावे जन को वे कर कृपांतर उतारे बस प्रेत भूत पात्र को तारे सर्व रूप का उद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास किसका नाम सत राम दास आत्म राम कृष्ण द्री आया दास दसंतन पाहे तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गै प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगुर संगा तुम दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हिता वह जीवन मुख सो कहा वह तैसा हरक तैसा सो सदानंद तय नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राख तैसा तिनाओ आपे करण करावण योग प्रभाव है सोई फुन होग अस्त्रवापयंत तरंग लिखी न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जानंत न पारावार नानक रचना प्रभ रचि बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट वन प्रमेय दासी कई कोट वेद की श्रुति कई कोट तपिश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक कृतिक अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को ही रहे कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पात्र वृख निप जाए कई कोट पवन पानी वसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्य सून खेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपना सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुकर मृगा सब ते नेरे सब ते दूर नानका बुलिप्त रहा प्रभुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे हमरे कई कोट बोझो नहीं फिरे कई गोट बैठत ही खाए कई गोट काले तक पाए कई गोट कीर्तनवंत कई गोट माया में चिंत जय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई गोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागे कई गोट प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई गोट दर्शन प्रभ्यास तिन को मिलो प्रभ विनाश कई गोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार
कई बार पसरी उपासार सदा सदै के कंकार कई कोट कीने भोपात प्रभति हो ब्रह्माश मात ताका अंत न जाने कोई अपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तम प्रगास कई कोट तत् के बिते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोटा नाम गुण गावे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सत ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अलसो इष्ट पदी करण करावन करने जोग जो प्रभाव है सोई हो खिन मैं ताप तापन हारा तने किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे बुझे हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रिहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै तां पात्र धरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पथ सुधारै आप करै अपन बिचारै दुआ सिरिया के आप स्वामी खेले विकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहु मानुख ते क्या हुए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजान विख्या मैं रचे जी जानता अपना बचे पर मैं भूला दह दिस्तावे निमुख माचार कुल फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगदी नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच पीठ को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दा जिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही साथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुनती कबहू उच नीच में बसे कबहू सोग हर क्रब हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू वकास पयाल कबहू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहू निरत करै वो भात कबहू सोए रह दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबू हुए वह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रवरक कहते ही रह गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधिक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जी अनक जुन परमै परमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस्पावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू साध संगति उपावै उस स्थान ते बहु न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नामृति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जले आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सदगुरु पान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत दृष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन्म रह भोजन प्रभावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानकी हां सुख नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होय कर गरबावै तिन समान का संग ना जावै बोलस कर मानुख उपर करे आस पल पीतर ताका होय विनाश सब ते आप जानै बलवंत खिन मैं होय जाय प्रसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो धारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर फिर अवतार अनिक जतन करा तम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै इसे भलाई निकट न आवै सर्व किरेन जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोई जब जाने मैं किस करता
तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चन्ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लग उठता वै तृप्त नयावै माया पछ पावै अनिक भोग विख्या के करै न तृप्तावै खप खमरै बिना संतोख नहीं कूरज सुपन मनोरथ व्यर्थे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बिचारु जैसी दृष्ट करी तैसा हुए आपे आप रव सोए जो कुछ किनु सु अपने अपने रंग सब ते दूर सबू कह संग बुझे देखे करे विवेक आप है अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए न सदी रे असमाय आप देश समझे आप व फिर चिये सब कह साथ आप गिनु अपन विस्तार सब कुछ उसका करने हार उसते पिन कहो कि छोरिथान तनंतरी कह सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग अपार मन में मन अपने भाई नानक कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद गिने वकियानी सच सच सत सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तर रूप सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट कर सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार उस्तपदी संत कै दुखनार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोबत हीन संत के हथे को रखै न कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संसंग निंदक बीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाही नान संत पावे तौ पीगत पाए संत कनिंदक माथ ताई संत कनिंदक किन टिक न पाई संत कनिंदक महतियारा संत कनिंदक परमेश्वर मारा संत कनिंदक राजतेहीन संत कनिंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी हुई मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित्त संत के दुखी को डान ला गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते डरे संत दुखी कहो ना ही डाओ नान संत भावे तले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किचनाए अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी को वरण रखन हार नानक संत भावे ता ले उभार संत का दुखियों बिल लाए जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पाव किंद नहीं त्रापै संत का दुखी चुटै केला जो बुआड़ खेत माए दोहेला संत का दुखी धर्म थे रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत कृत निंद का तुर ही भया नाम युद्ध स्वभाव है सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब कर तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात सहते आओ सास गिरास सब कुछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसने कृपा करे तैसा अपन नाम दे बड़ बाकी नानक जन से श्लोक तजु से आनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहुँचाए अष्टपदी।
मानु की टेक वृथि सब जान, देवन कोई कह भगवान, जिस कह दिए रह अगाए, बौर न तृष्ण लगया मारे रखे कुआप, मानु कह किस नाही हाथ, जिसका हुक्म सुख होए, जिसका नाम रखंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न लागे कोई, सत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सासंग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर कह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की सूची जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजय, तिसकी जानू तृष्णा बुझय, सा संग हर हर जस कह, तो सर्व रूप त्योहर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर परम मन चिते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस पर भी अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुकम सोई असूल, न कि जन्म न किच मरे, आपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आप ही आप सगल में आप, अनेक जुग तच रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण धारो ब्रह्मांड, अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सुबावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करे सुप्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए, करने हर पछाणे सोए, प्रभ का किया जन्म मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिसमाय समाये, सुख निदान उनू बन आए, आपस को आप दीनु मान, नानक प्रभ जन इको जान, सलोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरथा जन अनहार, जाके सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार, अष्टपदि टूटी गढ़ अनहार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रीमन मेरे सदा हर जाप, बनासी प्रभ्या पे आप, अपन किया कछु न होए, जिस प्राणी लोचे कोए, तिस बिना ही तेरे किस काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होए नाही मुह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भ है, जहाँ सब किस इसका दी है दर्भ है, सूरा जी को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता वह, जी को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा अरोग, जो मंदिर को थम मैं थम मन, त्यों गुर का शब्द मने असमन, जो पाखा नाम चढ़ तरह प्राणी गुर चर लगत निस्तर, जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास, जो माँ ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत पुटावे, तिन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग दूत सहज तार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला गाहे फिर जान, कौन बसताई तीर संग, लपट रस लोभी पतंग, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पद सिद्धि कर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज मान लेहु मन बोल, राम नाम हृदय में तो लाद के सत्य संचाल, अवर त्याग विकिया जंजाल, तन तन कह सब कोए, खूजल हर दर गह सोए, एहो व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सुध बलिहार है, चरण साध के तुय तुय पीओ, अर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूर करो इसनान, साधु पर जाइये कुर्बान, सा सेवा वडभागी पाइय, सा संग हर कीर्तन गाइय, अनेक विघ्न ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे,
ਓਟ ਗੈਸਨ ਤੈ ਤਰੇ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਥੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਿਣਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਈ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਯੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਊ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤਿਉਚ ਨਿਰਮਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਧੀਆ ਜਾ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉ ਲੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕੈਤ ਸਾਚੀ ਦਿਲ ਸਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸ ਆਰ ਪਾਰ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸਤੇ ਪਰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੂਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕਹਿ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਧਿਆ ਭਗਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵਾਰੇ ਵਗਾਏ ਪਿਤਾ ਕੇ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਰ ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ ਸਵੱਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੀ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਕੂ ਭਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਕਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਵਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਏ ਪੂਰੇ ਓ ਪੂਰਨ ਸਵਟਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਲਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੀ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਣੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੁੱਝੈ ਜੀ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਵਾਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰ ਸੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਵਰਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕ ਜੁਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀ ਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਾਈ ਬਿਸਮਾ ਜਿਨ ਬੁੱਝੈ ਤਸਾਇਆ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਕਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਥਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਜੀਉ ਸੋਟ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਵਸਤ ਮਾਹੇ ਨੇ ਵਸਤ ਵਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਏਕ
ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम खैरंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धार है, नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत में तो कोई न लगे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक को देवचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दातिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल रखे, लस कर करे भस्म करे, लस कर कोट लाके, जिसका शासन कट ताप ताको राख दिख रहात, मानस जतन करत वो भात, तिसके कर्तव्य व्यर्थ जात, मारण रखे वरना कोई सर्व जी अख सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक पर वल कराणी, बार बार बार प्रभु जपिय, पी अमृत मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चावर नाही दष्टाया, नाम तन नाम रूप रंग, नाम सुखर नाम संग, नाम राजो जन त्रिपतानी, मंत्र नाम मैं नाम समानी, उठत बैठ सोवत आम, कहो नानक जन कै सुध काम, बोलो जाजे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की निदात, करे भगता तुम कह चाहे, प्रभ अपने सिर रहै समाये, जो हुआ उत्सु जाने, प्रभ अपने का हुक्म बचाने, जिसकी महिमा कौन बकानू, जिसका गुण कह न जानू, आठ पैर प्रभ सह जूरे, कहो नानक से जन पूरे मन मेरे, तिनकी ओट ले मंत ने अपना, तिन जन दे जिन जने अपना, प्रभु पछाता सो जन सर्व दुख का दाता, जिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्शा पाप मिटावे, अवर स्यानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान हुवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उतरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिक्की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत फल सुवार, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल संभार, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै, मन विचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनिक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियान पलया न जाइये, नान कैसा गुरबड भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन आघने, मन संतोखा तुम पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमर दृष्ट पिकै हो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए, जे बाए कुष्ट अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस पर साधु ऐसा प्रभ जपने, एहो हार रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए,
उस गुर का नाही कदे बिनासु, जाके मन प्रगटे गुणतासु। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश शिव को दे। वो माया के संग न लीप, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासी, नानक परम दुख तहते नसी। तप्त माए ठाट वरताई, अनंत भया दुख न टे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। भव चुका निर्भव होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसी। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चुके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सर गुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा ना ही कोई, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक यो धन सार। उस्पदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवरूपाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृद में उतारू। करण कारण सो प्रभु समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हरवत। एह तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसु रखु मन बाहि, सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस तन कौ चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवकद लाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दर गै परवान। मन प्रभुतु हर कै नाई, ता जिस ताव ता वैटाई। ताको बिघन न लागे कोई, जा कैर दे बसे हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाऊं, सिमर सिमर सदा सुख पाऊं। पौ बिन सह पूर्ण हुए आसु, भगत पाया तुम प्रगास। चित कर जाए वैसे अविनाशी, कौ नानक काटी जमपासी। तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सूखा चूकाचा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यों रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक उपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मातू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सतहर को नाओ, नानक सहज सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरे उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं विख फैल। हो हे अचिंत बसै सुख नाल, सास गुरा सर नाम सुमाल। छाड़ सियानब सगली मना, सास सुन पावे सच तना। हर पूंजी संच करु बिहार, इहां सुख दर गह जयकार।
सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सालाहे सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मन तन जापे एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते पहे एक अराध प्राचित गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम।

महासुख हुए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाखिया से जन तृप्तानी, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस चरंग, उपजय चाओ साध कै संग। परे शरणवान सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग। बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रत्ते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे, गुर प्रसाद को बिरला लखे। सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे, जन्म जन्म का टूटा काटे। गुर पूरे तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इह काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहु अवरह नाम जपावो। भगत भाई तरिये संसार, बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ। नेत्रोपेख

कही न जाए, नानक रहिया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयालु, भगत वछल सदा कृपालु। अनाथ नाथ गोविंद गोपालु, सर्व कटा करत प्रतपालु। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधारु। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाई लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगी, रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। सलोक सार

आप अष्टपदी जब अकार इहु कछ न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहु किसे व्यापत जब अपने आपा पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन केला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तर है तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप आपिय चर जा नानक आपन रूप आपिय पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिदर लगत कौ कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कवन त्रिपावे करन करावन करने हार नानक करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै वेद कतेव कहा कोचीन जब अपने आपा पुर धारै तो सगन अपसगन कहा विचारै जे अपन ऊच अपना बनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जह अचल चेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आपा पतियारा तय कौन कथे कौन सुन नैहारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आप है पहुंचा जे आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप पुन तै पही कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजार हौ मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन खेला कर दिखै खेल संकोचै तो नानक कै जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाकाया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौत करै अनंत चूज आपह रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आप न लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै।

को पसरिया। दूजा कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार। आप है एक आप विस्तार जाति सुभाव है तन सृष्ट उपाय। अपने भाणे लई समाये तुम ते भिन्न नहीं किच होए। अपन सूत सब जगत परोए जाकू प्रभ जीव आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए।

जिस मनो विसारै तिस तज अवर कहा को जाय। सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ।

तब ऊपर होत कृपाल, अपने कर्तव जानै आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपालै जीअन बहु पात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया।

परम पद पाई, स्त्रे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर, अन दिन पूछे गुर के पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभया पह मेले।

जिस मन बसै ति साच परिकिया। मन तन नाम जपहु लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर नया वह जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरै राखन हार ते आए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन

पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दै दिशे समाही तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।

आप अडोल न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेले खेल, बोल ना पाइये गुने अमूल, सर्व जोत में जाकी जोत, तार रहो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में इहो विश्वास, संत

सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी ए रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एकंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आपर पूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैना पेख नहारा,

के गुण गाओ वस्तुपदि पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित त्याग उतरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का

नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ता की गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध सा संग मिटै, संत कृपा ते जमते छुट्टै। जाके मस्त कर्म।

वै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदार दिन भर शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माही सुमानी।

सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रभनाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

महापुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सयाणपां लख होहे तां इक ना चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखशीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै आदरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाखिया भाओ अपार आखा है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै।

नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कह जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इसनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज त्यान नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पातशाह सुना है अंधे पावै राह सुना है हाथ होवै असगाह नानक भगत सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछै पशुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है सुरत होवै मन बुद्ध मन है सकल भवन की सुध मन है मोह चोटा न खाए मन है जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है मार गुठाक न पाए मन है पथ स्यों पर गट जाए मन है मग न चले पंथ मन है धर्म से थी संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है पावा है मुख द्वार मन है परवार है साधार।

मनै तरै तारी गुर सिखो, मनै नानक भवह न भिखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कहै करै विचार, करते कह करणै नाहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर किता पार। धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा की नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लेवलाए तार। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे। असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख काहे सिर पार, होए अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जेव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाउ। विण नावै नाही को थाउ, कुदरत कवण कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिय हाथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइय ओत होए। भरिय मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। सुअस्त आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वखत कवण, कवण थेत कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो का दिया, जे लिखन लेख कुरान। थेत वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सर ठीक साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आख है, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जी को आपौ जाने, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके। वेद कहन एक वात, सहस अठारह कहन कतेबा। असुलो एक तात, लिखा होए ता लिखी है। लिखा होए विनाश,
नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एति सुरत न पाईया, नदियां अतः वाह पावा है सुमुंद न जानिया है। सुमुंद साह सुल्तान गिरहा से ती माल तहन, कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना विसरा है। अंत ना सिफति कहण ना अंत, अंत ना करण देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बेल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा होवे कोई तिस ऊचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगा है जोद अपार, केते अगणत नहीं विचार, केते खाप तुटा है वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे, केते दुख भूख साध मार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाण होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जेतिया मुहे खाए। आपे जाने आपे दे आख है से पे के ई के, जिसनु बखसे सिफत सला, नानक पात साही पात साहौ। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आव है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लेवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े कर है वख्याण, आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है किते किते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। किते आख है आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, किते किते होर करे हे ता आख ना सौका है केई के। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आख है बोल बेगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो घर के हा, जित बह सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परि स्यों कहिए न केते गावन हारे। गावे तुहनो पौन पाणी बै संत्र, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित गुप्त लेख जाने, लेख लेख धर्म विचारे। गावह ईसर वर्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले। गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल वार भंडा कर कर रखे तारे। से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पात झोली,
ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਪੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਤੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲਿਖਿਆ ਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ ਕਛ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਾ ਹੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੂਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੂਰਤ ਮਾਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ
जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िय शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपनी

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪਾਇ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ, ਸਾਹੂ ਸਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਥਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਭਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਤੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੁਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤਹੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗ ਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਮ੍ਰਿਦੇ,
नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुग वे सुवरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्धदा बोधदा विरुद्ध करता अदो उर्द अर्धं अगं ओघर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदिया पेदिया नामं अकामं समस्त पराजी समस्तास्तमं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवं नृनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं सरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव आपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जिह बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चौदह है के बिख है जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थापे ओ सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सरच्यो स्वयं भव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्मताम सो परम रहत अपूत अलख आपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भगंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भगंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाका है नेत पाख तो नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुबार छंद त्व प्रसाद गुणगण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश नेश दिन अनाश आजान बाहु साहान साह
राजान राज पहनान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंगो आपा अपंगो गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आतदुत प्रचंड मितगत आखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद द्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वारती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद तो प्रसाद कथते कि आशे जदेश के भिज पेश के गंज करमै के भंज परमै के भिज लोक के आदित सो कह के आवधूत वरण के बेभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वरण के सर्वा आभरण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रिय है के ब्रह्मं स्वरूपे के अन पाओ अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बेहीने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रेहा कह के पाक बेऐब है के गै बोल गैब है के अपूल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पानना है के सर्वत्र मानना है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फाही में के आकल अलम के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशु सलाम सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीन जमान है तमी जो तमाम रजुअल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजी जुल निवाज है गनीमुल खेराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अशेज है अशूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अन उक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद
सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता प्रसावल छंद त्वा प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांत त्वा प्रसाद। कि जाहर जहूर हैं कि हाजर हजूर हैं हमेशो सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं कि साहिब दिमाग हैं कि हुसनल चराग हैं कि कामल करीम हैं कि राज करहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकान हैं हरासुल फिकान हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाइक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के कि सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है के अचलन प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शांतवा प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनाश मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस वेश अपंड जल थल महंत दिस वेश बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहौ एक सदाहौ ओ अंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चेत चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनज जुगात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ करम अत ठीठ करम अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है हर कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है आरे गंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है कुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग सांत रूपे नमो परम ततंग असतंग स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकाश
अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक वसेख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा सार की धार पछैया तुरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात फिरियो लिये सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा कौ शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेर तान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो।
ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ਼, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰਿਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਭਰਿਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਐ, ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੂ ਕਰੇ ਹਉ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੂਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸੇਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵਦਾਇਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸੇਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਾਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭਵ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਾਸ਼ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮ ਰਾਹ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੂਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰੋ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ

कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास दे ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कोशा करता श्री अस तुझ जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल सुने गूंग जो याहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहा हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सतरा सहस पण जय आर्द सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द ता गावह हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटाओ जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक कै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन दे बिन देह ने माणी साची लिवै बिन देह ने माणी देह ने माणी लिवै बाजहु क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया इस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजहु क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरहों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनो होर क्या करै वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसु एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन पया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै
आवो संत प्यारे हो।

अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ तेरी कित दुआरै पाईऐ। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्नै पाईऐ। हुक्म मनेहो गुरु केरा गावहो सची बाणी। कह नानक सुनहो संतो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा। अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा। क्या को आख वखाणा है, आख है ता वेख है सब तू है जिन जग तू उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीने सचा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसुन आया। लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला, निराली भगता हां केरी। बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार, ताज त्रिष्णा बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाला हो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कहे नानक चल भगता जुग जुग निराली। ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिव चलै जिना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिव चलावहे। एहो सुहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया जिन तुर हो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाईया। कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सह जाए, सहसा न जाए नह जाए। सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा ए वजाए। जियो मैले बारहु निर्मल, बारहु निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मन सा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले से वण जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जीव रहै गुर नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रह परुणै गुर बिन अवर ना जाने कोए। कहे नानक सुन हो संतो हो सो सिख सन मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो बबे कियां जाए।
अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैर वाणी, कहे नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पहाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव सकत आप उपाए कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन हुवै मुकत शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तताए सार ना जानी, तताए सार ना जानी गुरु बाजो तताए सार ना जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुतिया रहण विहाणी गुर किरपा ते से जन जागे। जिना हार मन वसया बोले अमृत बाणी, कहे नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहाणी। माता के उधर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारी है, मनहु क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे। उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनाओ अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समाधी है। कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनहु विसारी है। जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जात इस पाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुल कहे मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनो सिर सौंपी है विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पहना। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा बन जारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बाउड़ न तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुरु मिलै जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी तातु जग मह आया। हर जो तरकी तुद विच तातु जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातु जग मह आया।
मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नेत सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक इहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी हर बिन आवर ना देखो कोई हर बिन आवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया इहो विस संसार तुम देख दे इहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एको है हर बिन आवर न कोई कह नानक ए नेत्र आंद से सात गुर मिले हैं देव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो सच है सुनने नो पठाए सच है सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच है सुनने नो पठाए हार जियो गुफांतर रख कह वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नवने द तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया इहो सच।

एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला, सच्चे कर गावहे।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ।

तुमरी गत में तो तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दी दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

पै कृत नचे सब कोई नच नच हसे चल से रोई उड़ न जाए सिद न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ फौड़ी न उतर।

मुसलमान की पीड़ा पे कुम्हार घट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु किन न पार।

चली चंद्रा उल्कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लह आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मैं मेद तरवण हुआ नाम खुदाई लहु पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरपटा।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नहीं किसे केरी बाज सच नहीं तेरे बाटे ऊपर खर्च मंगा

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुरुप्रसाद जप आदि सच।

ननको ओसी सच जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटहे खिनो जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिनो जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावा जेह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावा सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत धन धन करहो जी सतगुर लग प्रभु पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो कन हर बूंद बसर मावल कुसम बसंत गुणंत नयावा रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावा रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर का कब जन पल उन्हें जो गावा पले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवा ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया अमा दृष्ट सब करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ महो वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवा गुर नव नत दरियाओ जन्म हम काल खुतुआ सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सबाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवां गुरपुरा भेट्यो वड भागी मन है भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा गुरपुरा भेट्यो वड भागी मन है पया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का।

0: বুনিহাল সাত্রিয়াকাল।
1: ওয়াহিগুরু জি কা খালসা, ওয়াহিগুরু।

ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਕੋਏ

कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, पर पंच कर परमाई हे। माया ममता छोटी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनिस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई हे। एक जप तप कर कर तीर्थ नावह, ज्यों तुद पावै तिवै चलावै, हठ निग्रह अब तीज न भीजै, बिन हार गुर किन पत पाई हे। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न पाखी, मनमुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर भरम।

नानक साच कहे प्रभ जाचै, मैं दीजै साच रजाई हे। मारू महल्ला पहला। साचै मिले शब्द मिलाए, जा तिस भाणा सहज समाए। त्रिभवन जोत धरी परमेसर, अवर न दूजा भाई हे। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पतीजै अलख अपे।

खाए, बहुत सियाणप भरम न जाए। पच पच मुवे अचेत न चेत है, अजगर भार लदाई है। बिन बाद विरुद्ध है कोई नाही, मैं दिखा लेहू तिस सालाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर्षों बणत बनाई है। प्रभ की गतमित कोई न पावे, जे को

आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाई हे। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर कीमत पूरी, अनहद शब्द लिखाई हे। एक नागे भूखे पवह पवाए, एक हठ कर मरहै न कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझ है शब्द कमाई हे। एक तीर्थ नावह है अन्न न खावह, एक अग्न जलावह है देह खपावह। राम नाम बिन मुक्त न हुई, कित बिद पार लंघाई हे। गुरमत छोड़ उजड़ जाई, मनमुख राम न जपै अवाई। पच पच बूढ़ है कूड़ कमावह है, कूड़ काल बैराई हे। हुक्मे आवै हुक्मे जावै, बूझै हुक्म सुसाच समावै। नानक साच मिलै मन भावै, गुरमुख कार कमाई हे। मारू महला पहला, आपे करता पुरख विधाता। जिने आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे सृष्ट उपाई हे, आपे नेड़ै नाही दूरे। बूझै गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एह निसलाहा। गुर संगत एह वडाई हे, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे। हर गुण गावह रसन रसेरे, पुस्तत करहै पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई हे, कोई जागत रह न सूते दिसह। संगत कुल तारे साच परिसह, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रह भगत लिवलाई हे, बूझो हर जन सतगुर बाणी। इहो जोबन सास है देह पुराणी, आज काल मर जाई।

यो तरिया भवजल भाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज्जह मन मुक्ताई हे। गुर पह मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई हे। गुर बिन उर्ज मरह बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। बादे मुक्त नाही नर निंदक, डूबह निंद पराई हे। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो हर नंदर। बिगर नाही गुरमुख तर तारी, यों भवजल पार लंघाई हे। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। ना जियो मरे ना मारिया जाई, कर देखै शब्द रजाई हे। ओह निर्मल है नाही अंधियारा, ओह आपे तख्त बह सुचियारा। साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मह आई जाई हे। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसह तख्त शब्द विचारे। तत लह अंतरगत जान है, सतसंगत साच वटाई हे। आप तरह जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। नानक तिसका लाला गुला, जिन गुरमुख हर लिव लाई हे। मारू महला पहला, केते जुगवर तै गुबारे। ताड़ी लाई अपर अपारे, धुंदू कार निरालम बैठा। ना तद तंद पसारा हे, जुग छत्ती तिनै वरताए। ज्यों तिस भाणा तिवै चलाए, तिसह सरीक न दिसै कोई। आपे अपर अपारा हे, गुप्ते बूझो जुग चतुआरे। गुप्ते बूझो जुग चतुआरे, घट घट वरतै उदर मझारे। जुग जुग एका एकी वरतै, कोई बूझ है गुरु विचारा हे। बिंद रखत मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया। आपे चोज करे रंग महली, और माया मोह पसारा हे। गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी। सास सास सच नाम सुमाले, अंतर उदर मझारा हे। चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति घर वासा पाया। एक विसारे ता पिड़हारे, अंदुलै नाम विसारा हे। बालक मरै बालक की लीला, कह कह रोवै बाल रंगीला। जिसका सासु तिन ही लिया, भूला रोवन हारा हे। पर जोबन मर जाहि कि कीजै, मेरा मेरा कर रू विजय। माया कारण रोए विगुचै, त्रिग जीवन संसारा हे। काली हूं फुन धोले धौले आए, विण नावै गथ गया गवाए। दुर्मत अंदुला बिनस विनासै, मूठे रोए पुकारा हे। आप विचार न रूवै कोई, सतगुर मिलै तां सो जी होई। बिन गुर बजर कपाट न खूलै, शब्द मिलै निसतारा हे। बिरद भया तन छीजै देही, राम न जपी अंत स्नेही। नाम विसार चलै मुँह कालै, दरगै झूठ खुआरा हे। नाम विसार चलै कूड़ियारो, आवत जात पड़ै सिर छारो। साहुरड़ै घर वास न पाए, पेयड़ै सिर मारा हे। खाजै पैजै रली करी जै, बिन अब भक्ति बाद मरी जै। सर अपसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा हे। पर विरति नर विरत पछाणे, गुर कै संग शब्द घर आण जाने। पर विरति नर विरत पछाणे, गुर कै संग शब्द घर जाने। किस ही मंदा आख न चलै, सच खरा सुचियारा हे। साच बिना दर सिजै न कोई,

तू आद जुगाद करे प्रतपाला, घट घट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद भावै तिवै चलावै, सब तेरो किया कमाता है, अंतर जोत भली जग जीवन, सब घट भोगै हर रस पीवन, आपे लेवै आपे देवै, तेहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्न अग्नि जी उपाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द निराला, साक्त दुर्मत डूबह दाज है, गुर राखे हर लिव लराता है, आप तेज वाय पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया होमै भ्राता है, इहो मन भीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै, अंतर चोर मुहै घर मंदर, इन साक्त दूत न जाता है, दुंदर दूत भूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवै जावै, पत खोई आवत जाता है, कूड़ कलर तर भसमै ढेरी, कूड़ कलर तन भसमै ढेरी, बिन नावै कैसी पत तेरी, बाधे मुक्त नाही जुगचारे, जम कंकर काल पराता है, जम दर बाधे मिलै सजाई, किस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावै, ज्यों कुंडी मीन पराता है, साकत फांसी पड़ै इकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूझै, आज काल पच जाता है, सतगुर बाज न बेली कोई, एथै उथै राखा प्रभ सोई, राम नाम देवै कर कृपा, यों सलै सलल मिलाता है, भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जादे मार्ग पाए, तेस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है, गुर की भगत करह क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखी, जिस बक्से तिसे पछाता है, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी सो प्रीत सो परसन, अहनिस निर्मल ज्योत सुबाई, घट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाखिया तिन दर्शन दीठा, दर्शन देख मिलै बैरागी, मन मनसा मार समाता है, सतगुर सेवै से परदाना, तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है, मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन तर चक्र धरे विचारे, आपे करता कर कर वेखै, साचा वे परवाहा है, वेकी वेकी जंतु पाए, दोय पंदी दोय रहा चलाए, गुर पूरे बिन मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़ है मनमुख पर बिद नहीं जाना, नाम न बूझ है भरम कुलाना, लैके वड्डी देन उगाही, दुरमत कागल फाहा है, सिमरत शास्त्र पढ़ है पुराना, वाद वखाण तत न जाना, बिन गुर पूरे तत न पाइए, सच सूचे सच राहा है, सब सा लाहे सुन सुन आख, आपे दाना सच परख है, जिन कौ नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख शब्द सलाहा है, सुन सुन आख केती बाणी, सुन कही है को अंत न जानी, जा को अलख लखाए आपे, अकाश कथा बुद्धता है, जन्मे कौवा जहवा धाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, किरत पया सिर साहा है, संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाए दुखा सुख दिए,
दुख सुख ही ते भय निराले, गुरमुख सील सुनाहा हे, नीके साचे के व्यापारी, सच सौदा लै गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल्लै, शब्द सच्चै उमाहा हे, काची सौती च टोटा आवै, काची सौदी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभ भावै, पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे, सब को बोलै आपन भाणै, मन मुख दूजै बोल न जानै, अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुख ताहा हे, दुख मैं जन्मै दुख मैं मरना, दुख न मिटै बिन गुर की सरना, दुखी उपजै दुखी बिनसै, क्या ले आया क्या ले जाहा हे, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जमतारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहा हे, हर के लोग नहीं जम मारै, ना दुख देखै पंथ करारै, राम नाम कटे अंतर पूजा, अवर न दूजा काहा हे, ओड़ न कथनै सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, तर गह पैदे जान सुहेले, हुक्म सच्चे पात साहा हे, क्या कहिए गुण कथे कनेरे, अंत न पावह वडे वडेरे, नानक साच मिले पत रखहु, तू सिर साहा पात साहा हे, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गढ़ अंदर, साचा वासा पुर गगनंदर, अस्थिर थान सदा निर्मायल, आपे आप उपाइंदा, अंदर कोट छजे हटनाले, आपे लेवै वस्त संभाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोल आइंदा, भीतर कोट गुफा कर जाई, नौ घर थापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाइंदा, पौन पानी अग्नि इक वासा, आपे कीतो खेल तमासा, बलदी जल निवरै कृपाते, आपे जल निद पाएदा, धरत उपाए धरी धर्मशाला, उत्पत परलो आप निराला, पवने खेल किया सब थाई, कला खिंच टहाएदा, भार अठारै मालन तेरी, चौर ढुलै पवने लै फेरी, चंद सूरज दोए दीपक राखे, सस घर सूर समाएदा, पंखी पंच उडर नहीं धावह, सफल्यो बिरख अमृत फल पावह, गुरमुख सहज रवै गुण गावै, हर रस चोग चुगाएदा, झिलमिल छिलकै चंद न तारा, सूरज किरणा बिजुल गै नारा, सूरज किरणा बिजुल गै नारा, अकथी कथहो चेहन नहीं कोई, पूर रहया मन पाएदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखै आप दयाला, अनहद रुण चुनकार सदा धुन, निर्भउ कै घर वाइंदा, अनहद वाजै भ्रम भउ भाजै, सगल व्याप रहया प्रभ छाजै, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दर सोहै गुण गाइंदा, आदि निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एकंकार वसै मन भावै, हौ मैं गर्भ गवाइंदा, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर न जाना दूआ तिया, एको एक सो अपर अपरम, एको एक सो अपर परम पर, परख खजाने पाइंदा, ज्ञान ध्यान सच गहर गंभीरा, कोई न जाने तेरा चीरा, जेती है तेती तुद जाचै, कर्म मिले सो पाइंदा, कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारै, वे परवाह अखुट भंडारै, तू दयाल कृपाल सदा प्रभु, आपे मेल मिलाइंदा।

तेती तुदे अंदर देख आप बैस बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाईंदा जेती है तेती तुदे अंदर देख आप बैस बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाईंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी सतगुरु जी ने बख्शिश मेहरामत कीती है अज दे दिहाड़े आपां अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ पढ़े हन सरवण कीते हन नाल कीते हन। गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने हाजरियां भरियां हन सतगुरु जी सभना की हाजरी दर प्रवान कर लैन दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां हुईयां बेअंत बेअंत फुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: अगला प्रोग्राम बड़े प्यार नाल स्टेज तो श्रवण करो जी। इस तरह मन की एकाग्रता बनी रहे, महाराज की आज्ञा लेके कारज रास हो जाएंगे सारे।
1: कुरपुर है कृपा धारी, पापूरी लोच हमारी। बड़े ही खुशियां भरे मौके से आके धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पुत्र राज दरबार दी हाजरियां भर के बख्शां लहरी परम सत्कार जो सत्संग जियो। आओ गुरां दी बख्शी फतेह सांझी करन दी कृपालता करनी सब ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़े मिनटां विच आपां धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी अपार बख्शिश द्वारा काका राहुल सिंह लाली, सपुत्र सरदार जयपिंदर सिंह लाली ते बीबी देवजी राणी जी दे आनंद कार्ज करन जा रहे हैं। बेटी मनरूप कौर संगेड़ा, सपुत्री सरदार मनजीत सिंह संगेड़ा ते बीबी शिमिंदरजीत कौर संगेड़ा नाल। इस तो पहला कि आप प्रोग्राम शुरू करिए, मैं आप सब नूं इत्थों दी प्रबंधक कमेटी वालों, इत्थों दी समूह संगत वालों, सेवादारां वालों, समूह कीर्तन जथियां वालों ते ढाकी सिंघां वालों, पाठियां वालों ते नाल सारे ही जो सेवादार हन उन्हां वालों जीओ आया आखदा। ते इस दे विच मैं इत्थे वर्णन करन लई नां ते नहीं लै सकना, बहुत समां लगना उस नूं। जिथे आप संगतां दोनों परिवारों के सदे ते आए हो, उत्थे बहुत सारे गुरु घरां दे सेवादार कमेटी मैंबर अहुदेदार आ जा के हाजरियां भर रहे हैं। सो उन्हां नूं भी वक्रे निजी तौर पर निजी होयां नूं मेरा। इस दे विच साडी अपनी कमेटी के घट्टो घट अद्धे क मैंबर जरूर हाजिर होए ने, उन्हां नूं भी जी आयां नूं जी। हुण आपां चलीए प्रोग्राम जिस काम लई आए, ते सुभाग जोड़ी लई बेनती है कि कुछ हिस्से हैगे आनंद कार्ज दे, जिस दे विच मैं कला कला हिस्सा दस देना एक दो मिनटां दे विच ही, फिर नाल ही शुरू हो जाणा प्रोग्राम। सब तो पहला धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र बाणी दे शब्द दा एक कीर्तन होना। शब्द है जी, कीता लोड़ीए कम सवार पै आखिए, कार्ज दे सवार सतगुर सत साखीए। ज्यों ही शब्द दा कीर्तन संपूर्ण कीता, भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्ने वालिआं ने तुरंत जथे ने, ते नाल ही फिर अरदास करनगे भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी, ते जिस दे विच सपाक जोड़ी ते उन्हां दे माता पिता ही केवल खड़े होणगे। बाकी संगतां बड़े प्यार ते शरदा नाल जिवें आप जी बैठे हुए इसी तरह विराजमान रहण दी कृपा करनी। अरदास तों उपरंत भाई साहब भाई नवजीत सिंह जी हुक्मनामा लैणगे। हुक्मनामा लैण दे नाल ही उह फिर बेनती करनगे सरदार मनजीत सिंह सिघड़ा जी नूं कि उह पल्ले दी रस्म अदा करन। पल्ले दी रस्म नाल ही फिर शुरू हो जाणा जी असली हिस्सा विआह दा, आनंद कारज दा, जिस दे विच फिर लावां दा पाठ, कली कली लाम दा पाठ होणा। चार लावां ने जी, ते चार ही परिकरमा होणियां, हर कलाम दी एक परिकरमा होणी है। सो प्रकरम जिहड़ी इंग्लिश विच राउंड हैगा जी, अराउंड गुरु ग्रंथ साहिब। सो ज्यों ही यानी नवनीत सिंह जी पहली लाम दा पाठ पढ़ करनगे, सुभाग जोड़ी जी नूं है उह ध्यान नाल सरवण करनगे। मैनूं इह नहीं पता हुण तुसीं बैठ के पाठ सरवण करना सुनना जां कि खड़े होके जी दस दिओ, मैनूं दोनों जणे दोनों तरह ठीक है, मर्यादा अनुसार आ। जे तो खड़े होके करना तां इस तरह कर दिओ, जे नहीं तां थल्ले नूं कर लो। खड़े होके आ जी, खड़े होके ठीक है, फिर दस देंगे जदों शुरू होना लावां दा पाठ, ते फिर तुसीं खड़े हो जाणा। शाबाश, थैंक यू। ते उस वेले फिर पाठ अपना सुन के सारा सरवण करके पहली लाम दा धन धन गुरु नानक देव जी का नाम, फिर दूजी बारी जदों आप जी ने सुनिया फिर मत्था टेक के पहली परिक्रमा शुरू कर देनी है, जिस विच राहुल सिंह लाली जी आप जी ने अगे अगे चलना, ते बेटी मनरूप कौर संगेड़ा ने पिछे पिछे चलना मर्यादा दे अनुसार। ते मेरे वल नूं आउणा अपने सज्जे मोढे जो हन आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी वाले पासे रखने, फिर जा के वापस अपनी थां ते मत्था टेक के खड़े हो जाना दूसरी लाम दा पाठ सुन सरवण करन लई। इस तरह तीसरी ते चौथी चारे लावां दा जदों पाठ हो गया, फिर आप जी बैठ सकोगे। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जरूर अपना हिस्सा पायो। जिवें वीर जी ने दस्या ना, एक एक डालर विच भी बरकत है। पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी आई इस स्थान नाल, ते अगे साडे बच्चियां दे बच्चे भी सारे कारजां विच गुरु आप खलोएगा। बीबियां पैणा सब नूं बेनती है, आओ अपनी थोड़ी थोड़ी जेबां जरूर ढिलियां करो, क्योंकि ये दिता होया बाबे नानक ने कई हजार गुणा तुहानूं मोड़ना है। करो कृपा जी।

बहुत बहुत धन्यवाद सारिया संगतां दा। समूह प्रबंधक साहिबाना वालों तुहाडा अपना स्थान है, हर कारज बड़िया खुशियां नाल बैठ के इस स्थान ते माणीए। पीढ़ी दर पीढ़ी बाबे नानक तो बख्शिशां लैंदियां आ रही ने, ते होर भी आपां अपने बच्चियां नूं जन्मदिन होवे, खुशी का कारज होवे, निक्के निक्के बहाने बना के गुरुद्वारे आईए ते अपने जीवन नूं सफला बनाइए। मेरे वीर सरदार प्रदुमन सिंह जी संगेड़ा जिन्हां ने ये सेवावां लगाईयां कीर्तन दियां, उन्हां दा भी धन्नवाद है। हुण अरदास विच शामिल होईए जी। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत्व

0: सोनहर बोले सोनहर। अज दी जोड़ी लड्डू ते जलेबी वर्गी जोड़ी सानू इस जोड़ी तो आस है कि अपने माता पिता दादे दादी नाने नानी दी जो इन्हां नूं सिख्या मिली है उस सिख्या ते पूरे तुरनगे अते नाल दी नाल इन्हां नूं अपने आप भी माण होगा अपनी जिंदगी ते और जिन्ने अज असीं विआह ते आए हां सानू भी इन्हां दी जो वधिया जीवन है उहदे ते आस होगा। सो खुशी दा मौका कहिंदे हुंदे ने दिन चढ़िया सज्जना दे रंग वर्गा। अज दा जो दिन है साडे सारयां लई बड़ियां खुशियां भरा अते खेड़ियां भरिया दिन है और सानू सारयां नूं आस है कि जिस तरह असीं सवेरे उठ के बिल्कुल वधिया तरीके नाल तैयार होके पूरे कोट पा के और भैणां ने भी कोई रंग नहीं छड्डिया उसे तरह ही अज दा जो दिन सारयां दा बीते ये सानू अज आस है। विआह दे मौके ते रोज़ दे अखबारां विच रसालियां विच ईवन साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच विआह दे मौके ते बड़ा कुछ लिखिया धीआं धिआणियां हायो मेरे डाढ़िया रब्बा किन्ना जमियां किन्ना ने लै जाणियां पली किसे होर दे चली किसे होर दे जा धीए घर अपने तेनू बावल विदा है करदा। व्याह होया मेरे बावला गुरमुखे हर पाया हर प्रभ कारज चाया गुरमुख व्याहुण आया। किसे कवि ने चार लाइना लिखिया ने कीती गई संसार दी जदों रचना नाल मर्द दे नारी बनाई रब ने खानदाना दी ली तोरने लई व्याह शादी दी रफ चलाई रब। शादी एक दस्तूर जहान दा है हर कोई करदा है नाल प्यार शादी गुरुआं औलियां पीरां पैगंबरां ने आण के कीती विच संसार साधी आण के कीती विच संसार साधी। सो इन्नी ऐसी महत्ता है इस विआह दी। सो इस जोड़ी नूं लख लख बधाईआं। विआह पूरी गुरमदाता दे नाल होया रागी सिंघां ने बड़ा रसपना कीर्तन सानूं सुनाया जे गुरु घर दे रागी ने सानूं ना ते बड़ा माण है। किन्ना भी संगत दे विच बच्चे खेड़दे होण जां गल्लां करदे होण पर जदों इह कीर्तन करदे तां सारे बिल्कुल मन नूं एकागर करके सुणदे ने। रागी साहिबान दा बहुत धन्नवाद ते भाई साहब ने चार लावां दा कीर्तन कीता चार लावां दा पाठ पढ़िया ते नाल रागी साहिबाना ने कीर्तन कीता इन्हां दा फिर एक बारी धन्नवाद। हुण जे असीं दोहां परिवारां दी गल करदे खुशी दे मौके ते दादा सरपंच सिंह दादा सरपंच साहब गुरदयाल सिंह जी लाली अते दादी सुखचैन कौर जी लाली इस विआह दे जोड़े नूं अरशां तों खुशियां भेजदे ने अते नाना जीवन सिंह गरेवाल अते नानी भिंदर कौर गरेवाल ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਦਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਵੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ तीन पुत्र डंडियां वर्गी, एक धी सरू वर्गी, चारे पुत्र पढ़े लिखे। और बड़ी गल है भी जदों साडे इस कंट्री दे विच परिवार हो जाता, बच्चे ब्याहे जाते ने, सारे बेरंगू खिंड जाते, पर यह परिवार इको घर दे विच बड़े आराम दे नाल रह रहा। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, सानू अपने अपने परिवारों दे विच झात मार के देखिए तां बहुत थोड़े ही परिवार दा जीवन इस तरह है। सो जिथों तक लाली परिवार दा संबंध है, मेहनत कस बिजनेसमैन अते गुरु घर दी सेवा वाला परिवार है। सो जिदा पंजाबी च कहने हैं ना, इन्हां दोहां परिवारां दी गल भी कोठे वर्गा, कोठे जिदा कद ते तिवारे वर्गी शख्सियत, इस तरह की गल है इस दोहां परिवारां दी। अज चलो कोठे तां चवारे घट गए, पर जिहड़ियां हाई राइज बिल्डिंगां ने, जे असी चाहे अज देख लो, चाहे 20 सालां नूं देख लो, चाहे 100 साल नूं देख लो, जिहड़ी हाई राइज बिल्डिंग है ना, वो तुहानूं हमेशा ही अट्रैक्ट करदी है। सो इस तरह के ये दोनों परिवार ने, मेरा कहण दा भाव है कि जिहड़ी चवारे दी इट है ना, वो चवारे नूं लगी है। सो तुसीं इस ब्याह ते मोर लाउण आए हो, इस ब्याह की गवाही देण आए हो, आपो अपने कामां नूं विचार के आए हो, और तुहाडा इस दोहां परिवारां वल्लों अते गुरु घर की कमेटी वल्लों, यह जिहड़ा गुरु घर, मैं पहला भी कह चुका है, गरीबां दा गुरु घर है, इत्थे डालर डालर दे नाल इह गुरु घर बनिया। सो कमेटी का बड़ा वड्डा फर्ज है भी एडा वड्डा नैटवर्क, तुहानूं थोड़ी जी जानकारी दे रहे हां, 7 जत्थे ने इस गुरु घर दे विच, जत्थे 2 रखने मुश्किल हो जाते हैं, और जिहड़ी महीने की पेरोल है वो 70 तो 75 हजार तक सिर्फ पेरोल है इस गुरु घर की। सो इस करके थोड़ी जी तुहानूं मैं जानकारी दित्ती है। सो मुबारक तुहाडे मुबारक मुबारकबाद तुहाडे मुबारक कदमां नूं जिहड़े तुहानूं इस ब्याह ते लैके आए ने, और तुसी आ के खुशी खुशी इस जोड़ी नूं आशीर्वाद दित्ती है, और परिवारां नूं बहुत धनवादी बनाया। सो इन्ना ही कहिंदा होया हुण मैं जसपाल सिंह सैणी, यह भी परिवार दे बड़े मित्र ने, उन्हां नूं कहांगे वी 2 मिंट लई अपने जो बच्चियां नूं आशीरवाद तां खैर गुरु ग्रंथ साहिब ने देती है, पर बच्चों नूं जो इन्हां ने अपने तजर्बे दी प्यार दी गल्लां करनियां ने, सो 2 मिंट लई इन्हां नूं बेनती है। इन्ना ही कहिंदा होया वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठी साध संगत जीओ, गज के बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कटवान कुटान धन्नवाद है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां ने सानू जिंदगी दे हर पहलू विच जीवन का बल सिखाया, सेध दित्ती है। जिहड़ा भी इंसान गुरु साहब की शरण दे विच आ के शब्दों के उत्ते चल के अपना जीवन बतीत करता, उहदी जिंदगी दे विच ना तो कदे कमी आउंदी है, ना कदे तोड़ आउंदी है, ना कदे घाटा पैंदा। इह लोक सुखी है, परलोक सहेले। जो गुरु ग्रंथ साहिब का संकल्प है, हरेक धर्म दे विच अपनी अपनी विआह दीआं वख्खरीआं वख्खरीआं रीति रिवाजां हुंदीआं ने, पर सानू देखो किड्डा विलक्खण ते साफ सुथरा जिहड़ा गुरु साहब ने चार लावां की बख्शिश करके परमात्मा नाल ते दुनिया दे नाल जोड़न दा जो संकल्प दिता है, वह शायद होर इन्ना किते ना होवे। सब तो पहला मैं मनरूप कौर बेटी ते इन्हां दे पिता जी सरदार मनजीत सिंह संघेड़ा ते राहुल सिंह लाली, इन्हां दे पिता जी जयपिंदर लाली ते डेजी लाली, इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई होवे जिन्हां ने के अपने बेटे बेटी का विआह गुरु मर्यादा अनुसार कराया और मैं ये देख रहा हाँ कि बहुत ही जो सिख धर्म के अनुकूल सिंपल ड्रैस के जो विआह किया दोवें परिवार बधाई दे पात्र ने क्योंकि कई बार असी गुरु मर्यादा आम विआहां दे विच देखिया कई बार असी अपना ज्यादा शो ऑफ करने की खातर गुरु मर्यादा भुल जाने हैं लेकिन इस दोनों परिवारों ने बहुत ही सुचजे ढंग के नाल गुरु साहब के जो इत्थे दित्ती जांदी ट्रेनिंग उहदे हिसाब नाल बड़ी बड़ी ही सिंपल तरीके दे नाल जो विआह दा दी रस्म आ हो अदा की है ते नवाई है ते लावां भी दे चार पाठ होए ने बड़े प्यार सत्कार नाल खड़ के लावां लईआं ने ते मैं समझदा कि जो साडे रजिंदर सिंह जी गरियाल साहब जी बैठे ने यह शायद महिंदर सिंह जी बाजवा या गुरु घर की कमेटी ने इत्थे एक प्रोग्राम लिखिया होया कि पहला बच्चों नूं थोड़ी जी ट्रेनिंग दी जाए तो ट्रेनिंग आही है बस जो तुसीं बच्चों देख के चले हैं ट्रेनिंग यह हुई है तो क्योंकि सिंपलीसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी जो सिंपल रह के कोई काम करोगे तो गुरु नूं मंजूर हुंदा ते वाहिगुरु साहब ने जो सानू सिक्ख्या दित्ती है कि सिंपलीसिटी विच रहना सहायता करनी लोगों की तो अपने परिवारों के विच ते दुनिया के विचों बिल्कुल नीवे होकर विचरना तो अगे गल चलती है कि मैं कुछ परिवारों के नाम जो मैंने बोलने को कहा गया जिहड़े कि बड़ी दूरों दूरों चल के आए हैं सरदार जयपिंदर सिंह लाली ते बिल्ला संघेड़ा होरां दे सद्दे दे उत्ते पहला दोनों की इन्हों की वीर की गल मैं इन्हों 30-35 साल तो असं एक दूजे को जानते हैं तो जे बिल्ला संघेड़ा दरख्त है तो लाली शाह है दोवे के बिजनेस सांझे ने तो पिछले 30-35 साल तो असं कदे भी इन्हों मैं कदे अलग थलक नहीं होंगे वेख्या जो एक ने कही दूजे ने गल मननी है दोवें ही बहुत प्यार सत्कार वाले एक दूजे की इज्जत करने वाले बंदे ने यह नहीं कि कदे भी इन्हों असी कदे मैं अपनी जिंदगी दिखती है 35 सालों के कदे भी इन्हों उच्चे नीवे बोलते नहीं नहीं सुनिया तो जितों तक जयपिंदर लाली जो कि कबड्डी के भी बड़े तगड़े प्लेयर रहे इन्हों के दो बेटे बड़ा बेटा तो छोटा बेटा दोवें ग्रैजुएट ने यूसी अपने डेविस तो पढ़े लिखे बच्चे ने लाली ने बहुत ही मेहनत की है तो इन्हों की घरवाली बीबी डेजी ने भी इन्हों बड़ा ही साथ दिता ता ही बच्चे जिहड़े ना पढ़ गए तो गुरमर्यादा अनुसार विआह करवा रहे हैं तो इस तरह ही संघेड़ा साहब हरदमन सिंह संघेड़ा तो इन्हों की धर्मपत्नी बीबी कुलवंत कौर जी संघेड़ा जो कि बहुत रिस्पैक्टेबल ने कोई भी काम होवे चाहे गुरु घर का चाहे कम्यूनिटी का चाहे कल्चर का जो कोई बाहरों बंदा आए तो बीबी कुलवंत कौर संघेड़ा हमेशा चैकबुक बिल्ले संघेड़े फड़ा दी कि जिन्ना तुहाडी हिम्मत है उदू वध पैसे उन्हों कट के दो तो हुणे हुण गुरु घर में $1,00,000 जिहड़ा इन्होंने दिता तो लाली ने भी होरां ने भी $5,100 का चैक ये भी कट्टी बैठे ने सो मेरा मतलब है कि दोवें परिवार जिहड़े ने बहुत ही मनवर्तन वाले परिवार ने जो कि हीरा पिंड तो संघेड़ा साहब जिन्हें संघेड़ा परिवार आए ने ये सारे की आपसी में मैं देखा मैं हुण इंडिया से गए कट्ठे मैं ते बिल्ला भाजी तो एक हीरी पिंड गए तो इन्हों के जो भी पिंड को माड़ी मोटी गल सी तो बिल्ला कह रहे थे बैठ के ठीक कर लो तो सानू 5-4 दिन उत्थे कट्ठे रहने का मौका मिलिया तो सारे जो भी हीरा पिंड के लड़की के पिता जी ने सरदार मनजीत सिंह होरी तो इन्हों सारे का जो काम है ये बिल्ले संघेड़े ने अपने सिर ते लैके अपनी बेटी समझ के अपने फ्रेंड के बेटे दे नाल विआह किया तो इन्हों का बहुत ही वड्डी शख्सियत है कि जो काम मोहरे होकर इन्हें आप करवाया तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद तो जिन्हें भी हीरा निवासी ने उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुहाडे कोल एक बहुत ही वधिया इंसान है जिहड़ा कि हर एक दे काम दे विच आके तुहाडी मदद करन हमेशा तैयार रहिंदा ते तखर फैमिली आलोवाल तो इन्हां दे सरदार जगरूप सिंह जी भुपिंदर सिंह जी ते अमृतपाल जी जो मामे ने लाली होरां दे ते ओह आए ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी गरेवाल फैमिली जो कि लड़के दे मामा जी ने राजू गरेवाल सुपिंदर सिंह गरेवाल शायद कहते हैं उन्होंने धर्मपत्नी सरबजीत कौर तो उन्होंने बहुत बहुत बधाई होवे ते अटवाल फैमिली आई है जी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद सपराए फैमिली जो कि लाली होर उन्होंने जीजा जी ने तो उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनजीत सिंह जी तखर उन्होंने मामा जी ने उन्हों का भी बहुत

जो दिन है जो पुरब है जदों कुल संसार दे अंदर उस अकाल पुरख ने आप आके अवतार धारिया। पहला बड़े देवी देवते पीर पैगंबर आए कोई शक नहीं, पर अज दे दिहाड़े कौन आया? आप अकाल पुरख। सतगुरु साहब जी की बाणी कहती सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावे। कोई 16 कला, कोई 4 कला, कोई 1 कला संपूर्ण सी, अज सर्व कला संपूर्ण बापू आया। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की पढ़िया। तो मैं बेनती इस करके कर रहा जी, सारे इस करके गाइए क्योंकि आप जी नूं बाणी आप जी पढ़ने वाले हो, सारा नूं पता है जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवै ना उन्हें घट जाना है ना उन्हें वड्डा हो जाना है, वो जिड्डा है उड्डा ही है, पर एक फर्क जरूर पै जाना है जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही, उन्हें पातशाहियां बख्श दिंदा मालक जिहड़ा उन्हों गाउंदा है, उन्हों वड्डिया कर दिंदा है जिहड़ा उन्हों वड्डा कहिंदा है। इस करके उस मालक की वड्याई गई है। सारी संगत पढ़ियो जी।

Wir werden das jetzt schon

ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്.

जिसका नाम है अगर अंदर मुक्ता होता

Thank you.

0: ਬਣਾਈ ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਵ ਬਣਾਈ
1: ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ

किया होगा।

Thank you.

ਜਾਂ ਕਰੇ।